0: तू बच के रह। रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point. In

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DSET 9.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आप के ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएसईटी 9.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

दोस्तों हमारे स्टूडियो की लाइन अभी फिलहाल चालू कर दी गई है, आप जल्दी जल्दी से कॉल करके हमारे स्टूडियो को आपकी फरमाइश से दर्ज करा सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 10 बजे से चलने वाला 1 बजे तक कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल।
3: डीएस 89.6
0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल।
3: डीएस 89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
5: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
6: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, और थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के साथ हल्की बूंदाबांदी के साथ आप आनंद लीजिए ये पहला कुल का।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर?
0: दीपक मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं दीपक जी?
0: गंगापुर।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं गाने सुनना चाहता हूँ सिद्धू मूसेवाले।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6।

राधे राधे जी, नाम बताएं आपका। संता जादून जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हाँ जी,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे
3: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो डीएस।

0: तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सुशीला।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली फाटा गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: धन्यवाद। धन्यवाद।
2: वेलकम।

0: हेलो सर, राधे राधे।
1: राधे राधे, नाम बताएं आपका।
0: मेरा नाम समता जादव ने, मैं बाड़कला से बोल रही हूँ सर।
1: समता जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से।
0: मुझको गाना सुनना है, जान मूवी का गाना है। गाने के बोल है आई गो बुकाटा आई।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल क्या धन्यवाद।

बैठी थी आराम से, मैं छत पे गई कुछ काम से, मैं सीढ़ी पे था वो चोर खड़ा, दिल के अंदर था शोर बड़ा।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: ठंडीराम गुजर बोल रहा हूँ, नाम भद्रिका से।
0: ठंडीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो रिये
1: सर? सर गाने के बोले तो आल में बाहर आएगी तो हल्ला मच जाएगा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग। धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: हाँ, BSSM।
1: यस, BSSM, आपका नाम बताएं।
0: विशाल वेरवा।
1: विशाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सिंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: नसिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर?
0: कौन सा गाना?
2: टॉपलेस मैडम।
0: टॉपलेस मैडम,
1: ठीक है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
2: महिराज।
3: हाँ जी
2: महिराज।
3: महिराज कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर से।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: पिंक पिंक सजना।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश। कैसा हूँ रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: गुलशन
0: गुलशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ताल से ताल मिला।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी। तो

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ
0: राज
1: से बात कर रहे हो?
0: कोलोनी
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: उड़ गया
1: उड़ गया।
0: जी। वी पराग का सुन
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: ले।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते पलक जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: हाँ, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: रात को बॉलीवुड सुपर हिट लाए हैं दीदी।
0: हाँ जी सर बताइए।
1: रेडियो डीएस के लिए समर्पित है, टाइप कीजिए। बादल से बदली, फूलों से तितली।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिगाना

0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म वास्तव से सुनवा देंगे। हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जी योगेश जांगड़े पे मित्र, छत्तीसगढ़ से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म वास्तव से सुनवा देंगे, मेरी दुनिया है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6
2: पे रेडियो DS।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS। 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ
1: जी, भाई ठाकुर
0: से बात कर रहे हो?
1: मोहकला।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: वो गाना है ना, सावन का महीना आया
0: तो फिलहाल
1: है
0: आपकी
1: बता से।
0: फरमाइश पर ये गाना।

0: नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: मुझसे केशव शर्मा और सुषमा रानी और साथ में दोस्त हैं, दो दिन जी राजस्थान से हैं पूर्ण कर्मा जी और हिमाचल से हैं गोल्डी भैया जी। तो आज मैडम मुझे मिलन फिल्म का गाना सुना दीजिए लता मंगेशकर की आवाज़।
0: गाने के बोल सर।
1: मैडम सीरियस वाला गाना बोल नहीं याद आ रहे हैं।
0: मूवी कौन सी सर? मिलन।
1: हाँ मिलन फिल्म का है ना, वो मुस्कुराने लगे है ना गाना।
0: हाँ हाँ सर, ओके सर सुना आपकी फरमाइश पर।
1: आज मैडम बहुत मुबारक की बात है, आज आपका सेशन चल गया है, 15-20 दिन के बाद चला है।
0: सर कल से चालू कर दिया था।
1: नहीं हमारा आज ही चला, कल नहीं चल रहा था, कल मैंने देखा था, कल नहीं चला, आज ही चला।
0: हाँ जी तो हाँ अब चल गया ना।
1: मैंने इसके अलावा और कोई आपका फरमाइशी प्रोग्राम होता है शाम को या नहीं?
0: क्या सर?
1: जैसे फिर आपका फोनी फरमाइश कोई और भी आता है, सिर्फ यही होता है
0: सर? शाम को 3:30 बजे बाद दोबारा फरमाइश चालू हो जाती है।
1: हमने कभी ये नंबर तो यही होगा।
0: हाँ सर यही है, 3:30-4 बजे कॉलिंग खुल जाती है, बस 15-20 मिनट के लिए खोलते हैं कॉल क्योंकि शाम को हमारी कॉलिंग।
1: कितने बजे से कितने तक?
0: 4 बजे से चालू करते हैं सर, सुबह 4 बजे तक, 4 बजे तक,
1: 4 से लेकर 4:15 तक। और प्रोग्राम कितनी देर तक चलता है?
0: 5:30 बजे तक चलता है सर।
1: मगर ये जो फोन की जो आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो 15 मिनट करते हैं, 4 से 4:15।
0: हाँ सर
1: 4 से 4:15 डेली होता है या संडे को?
0: हाँ सर, रोज सर रोज चलता है,
1: रोज होता है। चलो मारेंगे ट्राई। तो आप ही करते हो वो भी प्रोग्राम पे या दूसरे साथ?
0: हाँ सर मैं ही करती हूँ, सुबह 10 बजे से 5 बजे 5:30 बजे तक मेरी ड्यूटी है।
1: मैं बहुत लंबी ड्यूटी है।
0: हाँ जी सर, ओके सर सुना रहे हैं।

0: प्रभु।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते दीदी, जय भवानी।
1: जय भवानी सर, नाम क्या है आपका?
0: विमल शर्मा, मऊखला गंगापुर सिटी राजस्थान।
1: कौन सा
0: ये सब भारत में है ना?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ओ दुनिया के रखवाले, तुम दर्द भरे मेरे लाले, मोहम्मद रफी साहब का गाना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:02 का। इस वक्त आप ऐसा टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: नमस्ते सर। नाम?
1: हाँ सर, अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
0: गाना सुनना चाहोगे सर?
1: ओडली ओड के नाचू।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो बहन, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है दो दिलों की दास्तान और गाने के बोल है हमरा ही मेरे हमरा ही।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन
0: जी। वेलकम सर।

0: हेलो।
1: टीएस रेडियो गंगापुर जी।
0: हाँ जी सर,
1: बेटा जी पालक बेटा प्यार सत्कार
0: सत
1: सत सत्रीकार भाई होर भाई सेहत ठीक है थोड़ी घर परिवार से ठीक है जी भाई।
0: हाँ जी सर, सब ठीक है घर पे।
1: तो बेटा जी अपने मीना साहब जी ठीक है वधिया जी
0: हाँ जी, मीना साहब जी भी ठीक है सर।
1: और ना भी बेटा मेरे साथ श्री कार ला रहे भाई।
0: हाँ जी, मैं बोल दूंगी। और आप ठीक हो सर?
1: ठीक है बेटा रात सारे बहुत ज्यादा मीह पै गया बहुत बढ़िया भाई रब ने सुन ली कूल कूल हो गया मौसम भाई।
0: हाँ जी सर, बरसात बहुत तेज हो रही है।
1: छोटे भी इधर भाई गंगापुर बढ़िया
0: नहीं
1: मीह पै
0: सर,
1: गया।
0: गंगापुर में नहीं है अभी बरसात।
1: चल कोई नहीं भाई रब उधर भी पाऊंगा बाबा नानक भला करूंगा।
0: हाँ जी सर, कौन सा गान सर, नाम क्या है आपका?
1: हाँ बेटा मैं पिंड मौड़ जिला बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोल रहा बेटा जी।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: बेटा मेरे मान जोग ना एक बड़े भाई है वो प्रिंसिपल रिटायर होया अमरजीत सिंह बाला साहब।
0: हाँ जी
1: उन्होंने ना बेटा दो दो पोतियां बेटा उन्होंने ना
0: हाँ जी
1: एक तो हैगी मनकीरत कौर बाला जी एक हैगी बलराज बाला जी आज उन्होंने की फरमाइश है बेटा पोतियां की फरमाइश है बेटा।
0: हाँ जी
1: एक बेटा देशभक्ति का गीत है लता भैन जी ने गाया है
0: हाँ जी सर,
1: तो बेटा मैं वो फिल्म का नाम था भूल गया मैं गुनगुना कर बताऊं।
0: हाँ जी सर बताओ।
1: हाँ बेटा वो बोला आए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी
0: ओके सर,
1: जो
0: सुना रहे हैं आप।
1: हाँ।
0: हाँ

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका सर?
1: मोहम्मद शादाब खान,
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: उत्तर प्रदेश फरुखाबाद से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम, रूट कर हम उन्हें भूल जाने लगे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: मैम, इतने दिन से कहाँ रेडियो बंद हो गया था क्या ये?
0: सर कुछ ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो गया था मशीनों में, तो वो बंद कर दिया था। बाहर का नहीं जा रहा था सर, गंगापुर के राजस्थान में, गंगापुर में ही चल रहा था बस।
1: अच्छा, वही तो मैम, मैं इतने दिन से सोच रहा क्या हो गया, बंद हो गया
0: हाँ
1: क्या।
0: जी सर, वो कुछ थोड़ी सी आग लग गई थी, मशीन थोड़ी जल गई थी, जो बाहर भेजे थे उनको सही कराने के लिए। हाँ
1: ठीक ठीक है, अभी सही है ना मैम सब?
0: सर, आ रहा होगा ना, चैनल चल रहा है ना सर इस टाइम?
1: हाँ चल रहा है मैम, 8 को चल रहा है। ठीक
0: हाँ जी, तो अब चालू हो गया इसलिए।
1: है, थैंक यू मैम।
0: यू वेलकम सर।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: चौकू कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं आ रहा हूँ वापस।
0: ओके, तो सुना रहे हैं आप, फरमाइश करिएगा।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: शाली।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: महबूब जो देखो एक नजर तो दिल को करार आ जाए।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आयुष शर्मा, हवाई
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: माधोपुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: तेरे बिन
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर।
0: कौन से गाना सुनना चाहोगे?
1: कोई झांसी वाली रानी का सुना दो। मैं
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: यज्ञेश
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: माधोपुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मुझको पीनी है, मुझको पीने दो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सौरभ मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: कलम।
1: कलम?
0: यस।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आप।
2: मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया। तेरा मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे
3: रेडियो डीएस
5: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: कोमल।
3: कहाँ से बात कर रहे?
2: गंगापुर से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: बादल लगे ऊंची उड़ान की।
3: ओके,

0: शहर की धुन,
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ सर, नाम क्या है आपका?
0: रफी खान, लोग मजे के पीछे।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: दुनिया में कितना गम है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो।
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: हेलो,
1: नाम क्या है सर आपका?
0: बबलू मीठा
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी,
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये दिल आशिक गाना का।
1: कौन सा सर?
0: ये दिल आशिक गाना
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अभिषेक मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: अच्छा सुना दिया।
1: ओके।

0: हेलो
1: हेलो जी मैम, नमस्ते जी मैम। नमस्ते
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मैं बोल रहा हूँ शेर सिंह जी भाई साहब, रायपुर से।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दिल में ये कहा है दिल से।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: थैंक यू।

0: हेलो। हेलो,
1: हाँ जी मैम, क्या आपका
0: मोनिका
1: कहाँ से बात कर रही हैं? कौन
0: रेलवे कॉलोनी
1: सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: राजस्थान राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक नगर है अजमेर। अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। यह नगर 7वीं शताब्दी में अजय राज सिंह नामक एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था। इस नगर का मूल नाम अजय मेरू था। सन 1365 ईस्वी में मेवाड़ के शासक, 1556 में अकबर और 1770 से 1880 तक मेवाड़ तथा मारवाड़ के अनेक शासकों द्वारा शासित होकर अंत में 1881 में यह अंग्रेजों के आधिपत्य में चला गया। 1236 ईस्वी में निर्मित तीर्थ स्थल ख्वाजा मोइद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध फारसी सूफी संत को समर्पित है। अजमेर में ख्वाजा मोइद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम भील के पूर्वज थे। 12वीं सदी की कृत्रिम झील आना सागर एक पसंदीदा पर्यटक स्थल है, जिसका नाम महाराजा अरुण राय द्वारा निर्माण करवाया गया था। अजमेर जैन मंदिर, जिसे सोनजी की नसिया के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर का एक पर्यटन स्थल है। तबीजी में यहाँ पर देश के प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अजमेर को भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय आदि उपनाम से भी जाना जाता है। उन्नत नस्ल की मुर्गी सर्वाधिक अजमेर में ही पाई जाती है। लालिया काल्या का मेला, उर्स पुष्कर का मेला यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। 1193 ईस्वी में अजमेर को दिल्ली सल्तनत के मामलुक द्वारा कब्जा कर लिया गया था और बाद में श्रद्धांजलि की शर्त के तहत राजपूत शासकों को वापस कर दिया गया था। 1556 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद अजमेर मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया। मुगलों ने मोइद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा करने के लिए शहर में लगातार तीर्थ यात्रा करते रहते थे। राजपूत शासकों के खिलाफ अभियान के लिए शहर को एक सैन्य अड्डे के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था और कई अवसरों पर एक अभियान के सफल होने के तौर पर यहां उत्सव भी मनाया जाता था। शाहजहां की संतान जहां आरा बेगम और दारा सिकोह का जन्म भी अजमेर में ही हुआ। औरंगजेब के शासन के अंत के बाद शहर का मुगल संरक्षण समाप्त हो गया। 1790 ईस्वी में मराठा साम्राज्य ने शहर पर विजय प्राप्त की और 1818 में अंग्रेजों ने शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 1900 के दशक से यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड, रोमन कैथोलिक और अमेरिकन एपिस्कोपल मेथोडिस्ट्स के यहाँ मिशन प्रतिष्ठान है। उस समय शहर में 12 प्रिंटिंग प्रेस थे, जहाँ से 8 साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। अजमेर अपने कई पुरानों स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के नक्शे में अजमेर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐतिहासिक अजमेर भारत और विदेशियों के लिए एक पर्यटन का केंद्र है। अजमेर धर्म और संस्कृतियों की परंपराओं के साथ रहता है। अजमेर में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। उन तीर्थ स्थानों में पुष्कर ब्रह्मा तीर्थ है, जो पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। इसके अलावा तारागढ़ का किला, 2.5 दिन का झोपड़ा, मोइद्दीन चिश्ती के दरगाह, जैन मंदिर, अजय पाल मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, बजरंग हनुमानगढ़, सोमनाथ मंदिर का पूर्व स्थान सोमलपुर, सोनजी की नसियां आदि प्रसिद्ध है। इसके साथ ही नारेली जैन मंदिर, आना सागर झील, फाई सागर झील, पृथ्वीराज स्मारक, अजमेर शरीफ दरगाह, अकबरी किला तथा संग्रहालय और साथ में साईं बाबा का मंदिर भी अजमेर में स्थित है। अजमेर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति के लिए बहुत ही विख्यात है और लोगों को अपने ओर पुराने समय से ही आकर्षित करते रहा है। आज भी बहुत सारे लोग अजमेर घूमने के लिए जाते हैं और साथ ही वहाँ के मुख्य पर्यटन स्थलों को देखते हैं।

दोस्तों वक्त हो चुका है 1:15 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में कुछ किलो के बारे में सुनते हैं।

जयपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत आरावली पर्वत से घिरा हुआ आमेर का किला, जिसे अंबर पैलेस भी कहा जाता है, इस किले की नींव मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 1589 में रखी गई थी। राजा मानसिंह जी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सेनापति के स्थान पर थे और इस आमेर किले के अंदर राज परिवार के लोग रहा करते थे और इस किले की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर दीवार के साथ में ही जयगढ़ किले का भी निर्माण किया गया था और इस आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए जमीन के अंदर से 2 किलोमीटर की गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। वो सुरंग भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आमेर किले की सुरक्षा के लिए जयगढ़ किले के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जयवान तोप भी बनाई गई थी। इस तोप का वजन 250 टन है और इस तोप को मात्र एक ही बार चलाया गया था और जिन सैनिकों ने इस तोप को चलाया था उनके कान के पर्दे फट चुके थे। आमेर किले को देखे बगैर जयपुर की यात्रा आपकी अधूरी रह सकती है, क्योंकि आमेर किले के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल बना हुआ है, जहाँ पर राजा दिन में मशाल जलाकर अपने रानी को चांद और सितारे दिखाया करते थे। और यहाँ का पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी और यहाँ के पुराने जमाने के शौचालय और दीवारों पर बनी हुई 24 सोने की पेंटिंग्स क्यों ना हो, ये आमेर किला अद्भुत वास्तुकलाओं से संपूर्ण है। आमेर किले तक आने के लिए आप अपने निजी वाहन के द्वारा सीधा किले के प्रवेश द्वार तक आ सकते हैं, या फिर आप हाथी की सवारी करते हुए भी किले में आ सकते हैं। लेकिन हाथी की सवारी करने के लिए आपको 3,500 रुपये टिकट देना होता है, जो कि बहुत ही महंगा है। तो आप चलकर या फिर यहाँ पर मिलने वाले जीप से भी आमेर किले तक आ सकते हैं। आमेर किले में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर आपको 1000 साल पुराना ये खंडर नजर आता है और इसी खंडर में ये आपको छोटा सा पीला कलर का पैलेस नजर आता है। इसी जगह पर महारानी जोधाबाई का जन्म हुआ था। बाद में उनका विवाह मुगल बादशाह अकबर से हुआ था और यहीं पर पास में जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, इसी मूर्ति की पूजा मीराबाई किया करती थी और इस मूर्ति को हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान मुगलों से बचाकर इस मंदिर में लाकर रखा गया था। आमेर किले के अंदर आते ही इस किले के 4 कोर्टयार्ड में से आप सबसे पहले कोर्टयार्ड यानी कि पहले आंगन में पहुंच जाते हो, जिसे जलेब चौक भी कहा जाता था, और नगारखाना बजाकर इसी जगह पर सैनिकों को और आम जनता को जमा किया जाता था और इसी जगह पर युद्ध की सारी तैयारियां की जाती थी। इस जलेब चौक में किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य द्वार बने हुए है, जिसमें से एक है सूरज पोल, क्योंकि इस दिशा से सूरज की पहली किरण इस द्वार पर पड़ती है, इसीलिए इस द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। और पुराने जमाने में राजा महाराजा इसी द्वार के द्वारा हाथी की सवारी करते हुए अंदर आते थे और आज भी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हाथी की सवारी इसी द्वार से अंदर आती है। और दूसरे द्वार का नाम है चांद पोल यानी कि मून गेट, क्योंकि चंद्रमा इसी दिशा से निकलता है, इसीलिए इस द्वार को चांद पोल कहा जाता है। और ये द्वार आम जनता के आने जाने के लिए था। यहाँ पर आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा और इसका नाम है लायन गेट यानी कि सिंह पोल, और इस द्वार पर 400 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग्स नजर आती है, जो कि आज भी वैसी की वैसी है। और इसी लायन गेट से प्रवेश करते हुए हम इस किले के दूसरे कोठियार यानी कि दूसरे आंगन में पहुंच जाते हैं। अंदर के तरफ आते ही संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये 48 स्तंभ की दीवाने आम की इमारत आपको नजर आती है। दीवाने आम यानी कि उस जमाने का कोर्ट रूम। इस जगह पर सामान्य जनता दरबार भरा करता था। इस इमारत के बीच में राजा और उनके मंत्री बैठा करते थे और इमारत के बाहर सामान्य जनता, गांव और जनता के सारे प्रश्न का उलझन राजा इसी जगह पर सुलझाया करते थे। यहाँ पर हमाम तुर्किश बाथ यानी कि स्नान घर भी बना हुआ है और इसी बात में राजा मानसिंह जी अपने रानियों के संग स्नान किया करते थे। इस जगह पर उस जमाने की पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी यानी कि गीजर भी बना हुआ था। गीजर में लकड़ियां डालकर लकड़ियों को जलाया जाता था। और ये जो आपको 2 पानी के टाके नजर आ रहे हैं, इनमें नीचे कॉपर की प्लेट लगी हुई थी। आग जलाने के कारण कॉपर की प्लेट गर्म हो जाती थी और उससे पानी गर्म किया जाता था। फिर बाद में इन छोटे से कॉपर के पाइप से पानी बाहर आता था
और इस छोटे से नाली के द्वारा पानी को इस बाथ टब में ट्रांसफर किया जाता था और पानी के साथ में ही चंदन, गुलाब, इत्र भी इस टब में डाला जाता था। और यहाँ पर चेंजिंग रूम और मालिश करने के लिए भी अलग से रूम बनी हुई है। स्नान घर के पास में ही पुराने जमाने के शौचालय किस तरह से होंगे, उनकी रचना, पुराने जमाने के शौचालय का स्ट्रक्चर हमें आज भी इस किले में देखने को मिलता है। दीवाने आम के सामने ये गणेश पोल द्वार बना हुआ है, जो कि राजाओं का निजी प्रवेश द्वार हुआ करता था, और इस द्वार पर हिंदू देवता भगवान गणेश जी की प्रतिमा और

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: और साथ ही में 400 साल पुरानी बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार पेंटिंग्स बनी हुई है, जिन्हें फ्रेस्को पेंटिंग्स कहा जाता है। और इसी गणेश द्वार के बिल्कुल पास में पुराने जमाने की भोजनशाला भी बनी हुई है। गणेश पोल द्वार के ऊपर आपको ये सुहाग मंदिर नजर आएगा। इस जगह पर विधवा और अविवाहित महिलाओं का आना बिल्कुल भी वर्जित था। जब राजा युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, तब राजाओं के रानियां इसी जगह पर बैठकर राजा की युद्ध भूमि में जीतने की दीप प्रज्वलित करके मनोकामना किया करती थी। और जब राजा युद्ध भूमि में विजय हासिल करके वापस महल में आते थे, तो इसी सुहाग मंदिर में बने हुए इस छोटे से खिड़की से रानियां राजाओं पर फूल बरसा कर उनका पुनः स्वागत किया करती थी। दीवाने आम के पास बनी हुई ये 27 कचेरी यानी कि उस जमाने का रिकॉर्ड रूम। महाराजा के अधीन उस जमाने में 27 जहांगीर यानी कि 27 राजवाड़े हुआ करते थे, और उन 27 राजोड़ों का लेखा जोखा इसी जगह पर किया जाता था। इस जगह पर अलग अलग 27 खाने बने हुए है, और इन खानों में राजा के मंत्री बैठकर उन 27 राजवाड़ों का अकाउंट यानी कि हिसाब किताब इसी जगह पर किया करते थे। इसीलिए इस जगह को 27 कचेरी कहा जाता है। 27 कचेरी के सामने आमेर किले का ये आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है, और सामने आप ये जो देख रहे हैं ये सैफ्रॉन गार्डन है यानी कि केसर की बाग। राजा मानसिंह जी ने 16वीं शताब्दी में यहाँ पर केसर की खेती करनी चाहिए थी, और केसर के पौधे जम्मू कश्मीर से लेकर आए थे। और इस खेती के लिए राजा ने आसपास इस खूबसूरत मावठा झील का भी निर्माण किया गया था, लेकिन इस जगह पर गर्मी ज्यादा होने के कारण राजा केसर की खेती करने में विफल हुए थे। गणेश पोल द्वार से अंदर आते ही आप इस किले के तीसरे कोठियार में पहुंच जाते हो, और यहाँ पर आपको ये शीश महल यानी कि दीवानी खास नजर आएगा। इस शीश महल को मिर्जा राजा जयसिंह जी के द्वारा बनवाया गया था, और इस जगह पर राज परिवार और राजा के मंत्री को ही आने की अनुमति थी। सामान्य जनता का यहाँ पर आना बिल्कुल भी वर्जित था। और इस जगह पर जितने भी आपको पिलर्स नजर आएंगे, ये सारे इटालियन मार्बल से बने हुए हैं। और इस शीश महल के अंदर आपको जितने भी शीशे नजर आ रहे हैं, ये राजा ने बेल्जियम कंट्री से मंगाकर यहाँ पर लगाए थे। और इस शीश महल के दोनों तरफ रानियों के दो कमरे बने हुए है। राजा इन कमरों के अंदर रानियों को दिन में मशाल जलाकर इस शीशों के द्वारा चांद और तारे दिखाया करते थे। शीश महल के सामने ये सुख मंदिर निवास बना हुआ है। इस जगह का राज परिवार के लोगों के द्वारा गर्मियों के समय में प्रयोग किया जाता था, और इस सुख मंदिर को सफेद संगमरमर और नीले नक्काशीदार मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनवाया गया है। यहाँ पर आपको ये मार्बल से बना हुआ जालीदार झरना नजर आएगा, और इस झरने के ऊपर पानी का टाका बना हुआ है, और जब इस झरने से पानी बहता है तो मधुर आवाज आती है, और साथ ही में बहुत ही ठंडी हवाएं भी चलती है। तो गर्मी के समय में रानियां इस जगह पर झूला लगाकर इस ब्यूटीफुल गार्डन को देखते हुए झूला झूला करती थी। और इस जगह पर आपको एक पुराने जमाने की बग्गी भी नजर आएगी। रानियां गणगौर और तीज के त्योहार में 10 किलो तक के कपड़े और ज्वेलरी पहना करती थी, तो उनको चलने के लिए दिक्कत आती थी, इस वजह से उनके लिए ये बग्गी बनवाई गई थी। अभी हम आ चुके हैं आमेर किले के चौथे कोर्टयार्ड यानी कि चौथे आंगन में, और इस वाले हिस्से में राजा मानसिंह जी रहा करते थे, और राजा मानसिंह जी की 12 रानियां हुआ करती थी। और इस जगह पर 12 रानियों के लिए एक ही डिजाइन के अलग अलग कमरे बने हुए है, और इस जगह पर पुरुषों का आना वर्जित था। और इस जगह के आखिरी हिस्से में यहाँ पर किन्नर पहरा दिया करते थे, और यहाँ पर सेवा करने के लिए भी किन्नर थे। इसीलिए इस किले के आखिरी हिस्से को जनाना महल यानी कि जनाना देवड़ी कहा जाता है। मानसिंह जी यहीं पर रहा करते थे, और अगर आप ध्यान से देखना, ये पूरा सेक्शन मानसिंह जी का है, और आपको इस दीवार

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: मैं भी आज कल जन स्कूटर ले जा।
2: तेनू पता ही है तेरे बापू जिस बाद जाके आप कल कर ले।
1: बापू जी स्कूटर नहीं नहीं नहीं बापू जी मैं कल जन स्कूटर
3: ओ गा सुन ऐ कर अज तू कॉलेज स्कूटर ले जा ते जांदा जांदा आर के नु आ पैसे बढ़ा जा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक
0: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 99.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुन रहे हो भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
1: अरे सुन सुन।
2: यस मां।
1: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
1: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तेरी तरह मुझे कौन चाहेगा। तुझे जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।

0: हर बीच में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आप।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:00, इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों आपने भी थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है दिल्ली से। दिल्ली से हमें कॉल किया है पूनम शर्मा जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम अमन गुजर है।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: हम गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहो?
1: डीजी मावे का।
0: कौन सा?
1: डीजी मावे का।
0: सर ये नहीं सुनते गाने।
1: आओ तो वो चला दो, ढीली ढीली सल्ट।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश।

0: मर जाना। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मैं चंदी राम गुजर बोल रहा हूँ। राम बदल क्या से?
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाने के बोल हैं, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।

पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मर हम गए।

0: ना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसे?
1: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। और हमारे यहाँ रिमझिम टिप टिप बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम हो गया है।
1: झरनापुर में तो बारिश नहीं हो रही, रिमझिम सुबह थोड़ी बहुत हुई थी 9 बजे, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं है, धूप निकल रही है।
0: जी जी, ये तो ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज किशोर कुमार साहब की जन्म जयंती है, जन्मदिन के अवसर पर किशोर कुमार साहब को साथ साथ नमन वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, एक श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। फिल्म का नाम है कटी पतंग।
1: हाँ जी।
0: और गीत के बोल हैं, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, बहुत ही प्यारा सुंदर गीत आपसे अनुरोध करना।
1: आपकी फरमाइश पर ये गाना
0: रात बनवा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: रूठा तेरा सोना सोनी तेरी पायल।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: सर नमस्ते।
1: नमस्कार
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तो बाबू खान है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तो मैं पाके हमने जहाँ पा लिया है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपके साथ।
2: I love it.

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तो चौधरी अर्ज कर रहा हूँ।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: अब तो बरसात की सी आवाज आ रही है माइक।
0: नहीं सर, बारिश तो हो रही है, सुबह हो रही थी, अब नहीं हो रही सर। सुबह 10-11 बजे हो रही थी हल्की हल्की बूंदे, अब बिल्कुल भी नहीं है सर।
1: चलो ठीक है, बढ़िया गाना लिख लो, हो जाएगी।
0: हाँ जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बरसों के बाद।
0: बरसों के बाद
1: बरसे हैं आज।
0: बरसे हैं आज। ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम सिंह खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है दोस्ताना और गाने के बोल है दिलगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन, लेकिन आवाज़ ही नहीं आती रेडियो पर।

0: है आपका?
1: आरबी गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो मैडम?
1: सिंगापुर से।
0: कौन से गाना सुनना चाहोगे?

दोस्तों वक्त हो चुका है 5 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ
0: तन्नू,
1: से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: और

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम।
0: हेलो
1: हाँ जी मैम, क्या आपका कौन
0: सनी सनी
1: से बात करूँ? कौन
0: नंगा
1: सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सोनिया नो प्यार भी नहीं करता।
1: ओके मैम,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम,
1: गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

दोस्तों शाम के 8 बज चुके हैं और लेकर हाजिर रहेंगे थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत। अभी आपने सुना भजन संध्या कार्यक्रम।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89।
2: मैं क्या जी, सत श्री अकाल, ईद मुबारक। ताड़ी खास मेहमान नूं ताड़ी एक चीज बड़ी तंग कर रही है।
3: की?
2: तेरी झांझर।
3: तू झांझर फड़ा मेरी।

0: एक चीज दिखावा
1: मेरे लिए?
0: हाँ चल अखा बंद कर। ए मैं दूसरी औरत दे अपनी जिंदगी चलाया।
1: दूसरी?
0: हाँ
1: ते पहली कौन सी?
0: मेरी बेबे।

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

मैं भी काशी जैसे थी एक राव की काशी। तुम्हें जंग पे जाते तिलक मैंने तुम्हारी जीत के लिए लगाया था। न जानती थी कि इस तिलक को तुम किसी और का सिंदूर बना दोगे। गुनाह है इश्क का फैसला है सूरते पाजेब में। आह कहत भी रहे और आबाद भी।

0: पर असी गुस्से हाँ तेरे नाल। बड़ा बंदा हो गया तू। सानू एक्टर नहीं लवेगा आपकी फिल्म च?
1: वाह, तुसी तो बहुत वधिया एक्टिंग करते हो।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

कोक स्टूडियो भारत सीजन 2 सब्सक्राइब नाउ।

0: Thank you guys for watching Thare Radio and do subscribe to ND Music.
1: और ये नीचे जो नोटिफिकेशन बेल है इसको जरूर प्रेस करिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट गाने के अपडेट्स मिलते रहें।

0: Hey guys, this is me Gurashi Singh and that is Tejinder Singh and I really hope हमारे ये नया पंजाबी वेडिंग मैशअप आप लोगों को पसंद आया हो
1: और अगर आपको ये मैशअप पसंद आया तो don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel.
0: The link is down below. Subscribe.

0: ना चले हैं, ठंड पै गई है, कार चलिए।
1: नहीं पहले जब